0: சைட்வாரின் இன்று ஒரு தகவல்.
1: தினமும் காலை 8:50 ஒலிபரப்பாகும் தென்கட்சிக்கோ சுவாமிநாதன் அவர்களின் இன்று ஒரு தகவல். இந்நிகழ்ச்சியின் விளம்பரதாரர்
2: 80 வருடங்களாக சைபால்.
3: PM ஜெய் அப் கரீபோ கே ஜெய் பன் கயி ஹை.
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है. आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार. 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार. आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं. अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें.

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: Defense Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17A indigenous stealth frigate into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defense capability.
2: मल्टीफंक्शन रडार के साथ
3: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टीफंक्शन रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हैज एन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो लॉन्चर्स एन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड अ क्लोज इन वेपन सिस्टम टू दीज ऑल थिंग्स मेक INS Mahendragiri एज इनविंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एज द Mahendragiri माउंटेन
2: Mahendragiri पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है।
1: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader who made remarkable contributions to the country. He emphasized that reading is essential for understanding the country and its people. Highlighting the role of libraries in nation building, the Home Minister said they are a powerful medium for spreading country's culture and knowledge among the masses along with modern education.
4: The foundation of all activities that advance the nation comes from knowledge, from wisdom and from putting that wisdom into practice. And that knowledge comes only and only from library.

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we will take calls from you, our listeners, on market related queries. But listeners, do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on these numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, aaj shanivar hai aur har shanivar ki tarah hum aapke phone calls par puche gaye sawalon ko seedha karyakram mein shamil karenge. Aap hame call kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन श्रोताओं, याद रखें कि किसी खास स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. बहरहाल, आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची, थैंक यू सो मच अनुभा. सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं और आपसे बातचीत भी करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस स्नैप 4-week विनिंग स्ट्रीक. सेंसेक्स एंड निफ्टी डिक्लाइन नियरली 0.3%. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. And global crude oil prices jumped this week amid renewed hostilities in West Asia.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार चार हफ्तों की बढ़त के बाद इस सप्ताह लुढ़के. सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 0.3% की गिरावट आई. भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया. वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवा में हर साल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है. और पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ते तनाव के कारण इस सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल आया.
0: And before we begin the program and take your calls, a very important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And over to Prachi for the top story of the day.
1: Top story लेंगे अनुभव, मगर उससे पहले उत्तर प्रदेश से हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं. विवेक जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: मार्केट मंत्रा टीम, आज के एक्सपर्ट को नमस्कार.
2: नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं जो इनकम टैक्स का AIS फॉर्म होता है
2: जी,
3: मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है, तो जब मैंने AIS फॉर्म डाउनलोड किया है

0: जी
1: उसमें मुझे सर, चूंकि मैं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ,
0: जी
1: और जो भी मुझे एरियर वगैरह बीच में पेड होता है वो मैं कम अमाउंट लमसम भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ।
0: जी
1: तो लमसम के लिए मैंने सर जो फंड सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें मैंने STP के माध्यम से लिक्विड फंड में डाला हुआ था, और STP के माध्यम से मैं अपने SIP में म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफर करता रहता हूँ।
0: ओके
1: तो सर जो AIF में है उसको मुझे किस प्रकार इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा, मुझे AIF से समझ नहीं आ पा रहा है। उसमें ट्रांजेक्शन आ रही हैं, 15 से 20 ट्रांजेक्शन हैं, तो उसको मैं कैसे समझ के उसको फाइल करूँ सर, कृपया गाइड करें।
0: चलिए विवेक और अनुभव और प्राची, क्योंकि टैक्स फाइलिंग सीजन चल रहा है, 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है,
2: जी
0: तो मुझे लगा बहुत सारे श्रोताओं को, और बड़ी तारीफ की बात यह है कि विवेक उसको खुद करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने के। AIS का मैंने एक नया नाम दिया है उसको,
2: जी
0: वैसे तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं, मैंने इसका नाम दिया आईना इसे समझिए, क्योंकि ये आपको आपके साल भर के ट्रांजैक्शंस के बारे में पूरी एक लेखा जोखा सामने दिखा देता है। तो विवेक, जो SIP म्यूचुअल फंड्स में आपने किए हुए हैं उनको, अगर आप उनसे सहमत हैं, देखिए AIS केवल एक ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि आपने जो एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, को बड़ा खर्च किया है, प्रॉपर्टी ली है, शेयर्स लिए हैं, कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन किया है, तो AIS आपको एक दिशा दिखाने का है। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि अगर AIS में जो एंट्रीज आ रही हैं आपके SIP की, अगर वो मैच कर रही हैं आपके असली निवेश के साथ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके म्यूचुअल फंड से कोई मुनाफा हुआ है, डिविडेंड आया है, या आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, उसी को आपने अपने रिटर्न में दिखाना है। आयकर विवरणी में अगर IFS जो स्केड्यूल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां दिखा सकते हैं। अगर कोई आपको डिविडेंड आया है, कैपिटल गेन आया है, तो एक स्केड्यूल CG होता है, उसमें आप दिखा सकते हैं। AIS सिर्फ आप रिकनसाइल कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने जो असल में किया है और AIS के बीच में कोई फर्क है, तो उसमें नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक फीडबैक का ऑप्शन होता है, उस फीडबैक के माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मेरा नहीं। अक्सर होता है किसी और के ट्रांजेक्शन आपके AIS में आने लग जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आप उसको देख लीजिए कि आपके असली ट्रांजेक्शन से वो मैच कर रहा है कि नहीं। बाकी आपने जो आयकर रिटर्न में दिखाना है, वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिविडेंड दिखाना है, या उस म्यूचुअल फंड से अगर कैपिटल गेन हुआ है तो दिखाना।
2: जी, लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम बेंगलुरु। श्रीकांत हैज जॉइंड अस ऑनलाइन। श्रीकांत, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: हां जी, नमस्कार।
2: नमस्ते, अपना सवाल पूछिए।
3: मुझे कहना है कि जिस तरह 4 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी उसके कारण टूट के दाम $70 से बढ़ के 126 तक पहुंचे।
0: जी,
3: हमारी सरकार ने वहां पे 13-14 रुपए जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है। अब वो वापस 126 से 70 पे आ गया
0: जी।
3: लेकिन वो वहीं पड़ा है। उसी तरह से जिस तरह 4 साल पहले जब रशिया की अटैक हुई थी तो उसी समय भी $70 पे रेट था और बढ़ के 140 हुआ, तो हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 100 कर दिया पेट्रोल को, और फिर जब जब दाम घड़े क्रूड के तब तब आपने उस पर टैक्स लगा के हमेशा उसको बराबर रखा। तो अगर भाई साहब यही हालत रही तो ना तो इन्फ्लेशन कम होने का है और ना जनता की दुविधा कम।
0: श्रीकांत जी देखिए, मैं थोड़ा इसके पीछे का आपको गणित बता देता हूँ। आप जो कह रहे हैं हम उसका सम्मान करते हैं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं
2: जी।
0: एक तो पहले 76 दिन कीमतें नहीं बढ़ी थी, तो पहले 76 दिन में बहुत बड़ा 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा था। दूसरा, इसमें यह भी बात है कि ऐसा नहीं है कि ये दाम घटेंगे नहीं। अगर ये $70, अब देखिए ना, हम जब बल्कि मैं भी सोच रहा था कि अब तो $71-72 हो गए तो शायद घटे, उसी टाइम फिर से लड़ाई शुरू हो गई। फिर ये 2 दिन पहले $80 के आसपास पहुंच गया, $79 के आसपास पहुंच गया। तो पेट्रोलियम मंत्री महोदय जो हैं हरदीप पुरी जी, उनका बयान आया पीछे कि हम 2-3 महीने देख रहे हैं, ये अगर टिक जाते हैं वहां पर तो हम घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे लोगों को। और अभी भी श्रीकांत जी, मैं बताना चाहूंगा कि डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी है, पेट्रोल में तो आ गया था पर डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी का मतलब है उनको प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तो जैसे ही घाटे की भरपाई होगी करेंगे, हम भी उम्मीद रखते हैं कि करेंगे, और सरकार बकायदा इस पे जो आप बात कह रहे हैं, आपके जो भावनाएं हैं वो सम्माननीय हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है, और उसको उसको जब उचित समय होता है उसके पीछे गणित होता है, तो उस गणित को ध्यान में रख के। बाकी ये बात सच है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पहली बात तो 13-14 नहीं, 7.5-8 रुपए बढ़ाए गए, 13-14 तो खैर नहीं बढ़े थे, पर श्रीकांत जी को मेरे ख्याल जो उसके कारण महंगाई है शायद वो पिंच कर रही होगी। मुझे उम्मीद है श्रीकांत जी, अगर ये कीमतें $80 से नीचे रही और 1-2 महीने तक, तो ये जरूर घटाए जाएंगे।
2: कोलकाता से हमारे साथ LP कोठारी जुड़ रहे।

0: कोठारी जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: हाँ, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, कोहली जी को नमस्कार।
2: नमस्कार कोठारी जी।
1: कोहली जी, जैसे मैं तो इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये AAS और TIS की फिगर्स जो है 95% तक ठीक है सब
2: जी,
1: लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिनमें उनकी फिगर कंफ्यूजिंग आ रही है
2: जी,
1: और वो मिल नहीं है, जो एक्चुअल फिगर मेरी है हमारे क्लाइंट्स की है उससे वो अलग आ रही है
2: जी।
1: और इस वजह से भी जैसे शेयर सेल्स, सिक्योरिटी सेल्स वगैरह की फिगरें, तो सर अब मैं उनको या इस TIS को फॉलो करें, या हमारे पास कुछ ऐसा रास्ता है कि हम उनको इनको ये कह सके कि भाई ये फिगर जो है वो सही नहीं है
2: जी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कोठारी साहब। आपसे पहले भी एक दर्शक इसी से मिलते जुलती बात पूछ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि AIS जो है एक सूचक है, एक इन्फॉर्मेशन जो कुलेट होकर आती है उसको प्रेजेंट करने का आपके लिए एक रिकंसिलिएशन दिया जाता है। अगर आप उससे सहमत नहीं है कोठारी साहब, आपको लग रहा है कि जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं असल में वो ट्रांजैक्शंस आपके नहीं, ऐसा भी अक्सर अनुभव प्राची देखा गया कि जैसे पैन नंबर गलत डाल दिया तो किसी और का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, किसी और के शेयर्स हमारे AIS में दिखते हैं, तो वहां पर कोठारी साहब नीचे फीडबैक का ऑप्शन है, आप उसमें फीडबैक डालिए। अगर आपको लग रहा है कुछ ट्रांजैक्शन आपके असली ट्रांजैक्शन से रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें फीडबैक डालिए कि ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, उसको उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष चिंता की बात नहीं, आपकी रिटर्न अगर आपके ट्रांजैक्शंस पर एक्यूरेटली बनाई गई है तो AIS में थोड़ा इधर उधर भी होता है, तो आप उसका बाद में जवाब दे सकते हैं।
0: दिल्ली से हमारे साथ बीरबल जुड़ रहे हैं। बीरबल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन,
3: नमस्कार। कोहली साहब को नमस्कार।
2: नमस्कार बीरबल जी।
3: सर ये पूछना था, जैसे मेडी क्लेम के ऊपर गवर्नमेंट ने GST घटाया था
2: जी,
3: मैंने मेरी अभी पॉलिसी ड्यू हुई है उसकी किस्त भर दी, मैंने पता किया था मेरी बैंक के थ्रू है, उसका ग्रुप पॉलिसी है ये, उसमें उन्होंने GST नहीं घटाई, ये ठीक है क्या जी?
2: देखिए GST जिन जिन पॉलिसीज पे घटाया गया है वो बीरबल जी, वो पॉलिसीज की लिस्ट आपके पास है, कोई एक पॉलिसी है जिसपे शायद इनका GST नहीं घटा है या उस पर अभी भी GST चल रहा है, और भी जैसे कार इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, उस पर भी GST है, तो सब चीज़ों पे नहीं घटाया गया है। मुझे लग रहा है GST 2.0 जब सेप्टेम्बर में आया तो बहुत सारी चीज़ों पर घटाया गया, और बहुत विचार करके, बहुत लंबा उस पर चिंतन चला, बहुत लंबा उस पर बाकायदा रिसर्च की गई कि कहाँ कहाँ लोगों को राहत देनी है। उम्मीद करते हैं आप जहाँ दूसरी चीज़ों पर भी चाहते हैं शायद आने वाले समय में वो घटाया जाए, पर फिलहाल अब जैसा है तो है, आप भी देते हैं हम भी देते हैं
4: जी। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम बेंगलुरु। NR प्रसाद जॉइंस अस ऑनलाइन नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन लाइन। मिस्टर प्रसाद, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: Hi, good evening, Market Mantra. This is Anna Prasad from Bangalore. Hello, Mr. Rohatki. Hello, Ms. Prachi. Good evening, Sharajji.
2: Good evening, Mr. Prasad.
5: Two questions, Sharajji.
2: Yes.
5: My first question is, about 3-4 weeks back, there was an analysis from the leading company.
2: Yeah.
5: India has fallen down to the 6th position in the top 10 market in the world. It has gone behind Taiwan and now it is in the 6th place.
2: Okay.
5: Basically, this is because of the geopolitical and war in India.
2: Yeah.
5: But it has fallen down to 6th position. How do you see now Indian market versus the foreign stock market?
2: Okay.
5: My second question is, SEBI has revived the buyback schemes from 1st of August.
2: Yeah.
5: Now, what will be the features for this? Personally, when I sell the listing on a buyback scheme,
2: yeah,
5: how the capital gains are applicable to me? Thank you. These are my two questions.
2: All right, Mr. Prasad, your first question is that you know the market cap, you know, is what Mr. Prasad is referring to, Anubha, mm-hmm, and Prachi. Yes, market capitalization, you know, the way it is calculated, number of shares floated by the market price of the shares. So, I think this is a very fluctuating piece of data. And right, because Taiwan and all that, because they are into semiconductors and so on. So our market, because of the geopolitical reasons and because of crude oil, because our country was heavily exposed to crude oil shocks, 87-88% of our total crude,
4: yes,
2: is imported. So obviously we were quite impacted vis-a-vis crude oil. So that was the reason our markets reacted. We have now recovered from that point. We had almost gone down to 23,000. I'm talking of Nifty. We are now well above 24,000. And global markets, you know, each zone in the geography has its own fundamentals. Sometimes we find the Kospi reacting. Sometimes we find the Nikkei reacting. Sometimes we find the Hang Seng. In fact, Hang Seng, the capitalization in Hong Kong market went ahead of us, because Hong Kong is a tiny country. Sometimes we find FTSE.

0: Nasdaq, DAX, Dow, S&P, Nasdaq. So they keep reacting, you know. So I think this cannot be taken as a parameter, Mr. Prasad, more importantly, to measure the, the performance of the company. I'm sure we will recover. Your second is about the buyback. Yes, buyback under the new rules applicable from 1st April. Is that buybacks will now be treated as capital gains. Earlier, if you remember, they were treated as dividends, and the capital used to be treated in the capital loss, but now they'll be treated as capital gain because they are not, because of the taxability change which has been made in the budget, Mr. Prasad. I hope both the points are clear, and I remain very optimistic on the markets, and our markets will recover. It's just a matter of time before that happens.
1: Sharadji and Prachi, we have our next caller online with us, but before we take the call from Amit Jha from Delhi, Prachi, why don't you tell us how the markets behave this week?
2: Bilkul. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में इस सप्ताह लगभग 0.3% की गिरावट आई. इससे लगातार चार हफ्तों की बढ़त का सिलसिला टूटा. पश्चिम एशिया में एक बार फिर से बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर इस सप्ताह बाजार पर साफ साफ दिखाई दिया. हालांकि विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार लिवाली ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया. साथ ही कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे ने बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डाला और इस कारण सप्ताह के दूसरे भाग में बाजार को रिकवरी में मदद मिली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस सप्ताह 195 अंक गिरकर 77,569 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक लुढ़ककर 24,207 पर आ गया. इस सप्ताह विस्तृत शेयर बाजार ने प्रमुख शेयर सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया. निफ्टी मिड कैप 100 में 1.3% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.2% की तेजी आई. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.32 रुपए पर बंद हुआ. और जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से अमित झा. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
2: जी, नमस्कार.
3: हाँ सर, नमस्कार.
0: नमस्कार अमित जी.
3: मैं ये पूछा था सर, जैसे कि सभी अभी पश्चिम एशिया में जो हालात थे 2-3 महीने पिछले में सर
0: जी.
3: तो कंपनी की क्वार्टर फर्स्ट 26-27 के क्वार्टर में कैसे रहने की उम्मीद, क्योंकि प्रभावित तो हुई होगी उनकी बिक्री या कुछ भी इनकम वगैरह. और दूसरा सर प्रश्न ये है सर कि अभी भी हम कह तो रहे हैं कि हम ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे स्रोतों पे निर्भरता कम कर रहे हैं, जिससे हमें जो विदेशी मुद्रा जाती है, जैसे कि हम ऑयल एंड गैस का और उर्वरक का ज्यादा इंपोर्ट करते हैं
0: जी.
3: ये तो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कितना प्रयास हो रहा है, हम कितना गीगावाट अन्य स्रोतों से, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल हो गया, परमाणु एनर्जी हो गया, चाहे पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, इनसे हम थर्मल पावर के मुकाबले कितना प्रतिशत बढ़ रहे हैं? क्या आपके हिसाब से ये संतोषजनक है प्रगति? धन्यवाद
0: जी. आपका पहला सवाल है Q1 रिजल्ट्स से. Q1 हम अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बोलते हैं अमित. Q1 के रिजल्ट्स थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान में युद्ध चल रहा था और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई थी
2: जी.
0: अब थोड़ी सी क्रूड ऑयल की कीमतें ठंडी हुई हैं, तो आने वाला क्वार्टर बेहतर हो सकता है. पर इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स की मिक्स रिजल्ट्स आएंगे. कुछ अभी पीछे एक आईटी कंपनी का रिजल्ट आया जिसमें मिला जुला सा रिजल्ट आया, तो मैं समझता हूँ ये क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा. दूसरा, आपने एनर्जी सोर्सेज का पूछा, तो आप ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा. मैं किसी एक का उठा लेता हूँ, परमाणु सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी जो होती है. अभी हम लगभग 9 गीगावाट हम न्यूक्लियर उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य है कि 2047 विकसित भारत का जो हमने टारगेट रखा उसमें 100 गीगावाट पहुंचाने का. तो बिल्कुल काम चल रहा है उस पर. बायोगैस हो गया, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है अमित. और अब ये जो हाल में संकट हुआ है, इसने एक तरह से एक्सेलरेटर दबा दिया है. मुझे लग रहा है जितनी भी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, उन सबको अब ये लगने लगा है कि इस पे तेजी से काम कर. भारत ने 2070 का लक्ष्य रखा था, पर मुझे लग रहा है हम उस लक्ष्य को और शीघ्र पा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं. हमारे आपके लाइफ टाइम में ही हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाएगा. आपको ईश्वर लंबी आयु दे जी.
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल. योगेश इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली. योगेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्ते.
0: जी,
4: उसको लेकर के है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इनके थ्रू कैसे अलग है म्यूचुअल फंड से, और जस्ट इन केस अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश होते हैं तो क्या उस केस में ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जितने ज्यादा गिर सकते हैं, या फिर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इनमें कम गिरावट होती है, और इनका बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है म्यूचुअल फंड की तरह?
0: बहुत अच्छा सवाल है योगेश.

0: और इनबिट का इन्होंने पूछा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दो नए प्रोडक्ट्स हैं। अगर हाँ योगेश, अगर कल को मार्केट क्रैश होता है प्रॉपर्टी का, तो उसमें फिर नेचुरल बात है इनकी वैल्यूएशन भी फर्क पड़ेगा। आपको पता है ये जो रिटर्न देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ये डिविडेंड देते हैं। मान लीजिए किसी ने ऑफिस बिल्डिंग दी हुई है, उसका किराया आ रहा है, वो किराया सब लोगों में बांट दिया जाता है। कल को कोई बिल्डिंग बेची जाती है, उससे जो कैपिटल गेन होता है, उस कैपिटल गेन को भी सब लोगों में बांट दिया जाता है। बिल्कुल, अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस जहां इन्होंने लिया हुआ है अगर वो किसी वजह से क्रैश कर जाते हैं, हालांकि इतनी जल्दी प्रॉपर्टी के प्राइसेस इस तरीके से क्रैश नहीं करते जैसे स्टॉक मार्केट करती है, पर हाँ अगर उसमें करेक्शन आता है तो उसमें जो साझेदार हैं वो, और इसका मैं स्ट्रक्चर आप पूछ रहे थे, इसका स्ट्रक्चर आगे एक एक कंपनी होती है, एसपीवी उसको कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, और उसके आगे एक ट्रस्ट बनी होती है। उस ट्रस्ट में सब लोग जो है एक तरह से भागीदार बन जाते हैं और उन सब में उसको बांटा जाता है। इसका बेंचमार्क ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा आपने पूछा, इसका जो टोटल वैल्यूएशन होता है, जो एसेट बेस होता है, क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते, मेरे दिमाग में एक दो बहुत फेमस रीट और इन्वेट के आ रहे हैं, पर क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते तो वो बाकायदा उसका जितना उसका टोटल पोर्टफोलियो होता है उसी के अनुसार उसकी वैल्यूएशन की जाती है, मोटा मोटा आप इसको समझ सकते। थोड़ा सा आज लोग बड़े लंबे लंबे डिस्कशन वाले पूछ रहे हैं और समय हमारे पास सीमित होता है, तो बहुत गागर में सागर भरना पड़ता है।
1: जी, बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसे बड़ा अच्छा मानती हूँ। जुड़ते हैं भिलाई से, भिलाई में हम रवि हमें कॉल कर रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: नमस्ते प्राची जी, नमस्ते अनुभा जी और शरद जी को नमस्ते।
0: नमस्कार,
2: मेरा शॉर्ट ही रहेगा सर
0: जी।
2: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो गोल्ड और सिल्वर में कभी सबप्राइम क्राइसिस जैसी परिस्थिति आ सकती है क्या?
0: गोल्ड और सिल्वर में कैसी परिस्थिति आ सकती है? सतरंग परिस्थिति
2: में जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था,
0: सब प्राइम, अच्छा सब प्राइम से नहीं, गोल्ड और सब प्राइम का रवि जी मतलब ये था, 2008 में आई थी ये, और मुझे याद है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर था उस टाइम जिसमें ये क्राइसिस आई थी। हम नाम नहीं लेते हैं तो मैं नाम अवॉइड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से नहीं, सब प्राइम क्राइसिस इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि ये वहां आती है जहां पर आप सारा ही उधार पर काम चलता है। सब प्राइम क्राइसिस का मतलब है कि आपने बहुत सारे मॉर्गेज किए हुए प्रॉपर्टी का, मुझे याद है हाउसिंग क्राइसिस थी, लोगों को अपने लोन रीपे करने में दिक्कत आ गई थी। नहीं, इसमें इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो गोल्ड लोन्स लिए जाते हैं उसमें सोने को प्लेज किया जाता है, तो अगर आप लोन वापस नहीं कर पाते हैं तो आपने जो अपना आभूषण रखवाया हुआ है वो उनका हो जाता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और उसका वो 70-80% आपको देते हैं, पूरा तो देते भी नहीं, तो वो करेक्शन ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता इसमें रवि जी कोई सब प्राइम क्राइसिस जैसी कोई कभी सिचुएशन आएगी, ऐसा नजर नहीं आता है।
1: Gautam from Ghaziabad is online with us, but before we take your call, Gautam, let's have a look at how the US markets behaved during the week and yesterday. Wall Street ended on a positive note yesterday. Among the major indices, the S&P 500 gained 0.4% and the Nasdaq Composite as well as the Dow Jones Industrial Average rose by 0.3%. For the week, the Nasdaq climbed 1.7%. The S&P 500 increased by 1.2%, while the Dow fell by 0.5%. Meanwhile, South Korean chipmaker giant, which made its U.S. debut on Friday, opened 14% higher. Looking ahead, investors will focus on the quarterly earnings season, which kicks off next week, as well as developments in negotiations in West Asia. And now, Gautam, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: Thank you. Good evening, Market Mantra team. I have a small question for the expert.
0: Yeah.
3: This is a stock which has been held for 5 years, which goes through a split.
0: Yeah.
3: And when this stock is sold, say within a year, what kind of capital gains will it attract?
0: All right, Gautam, if there's a stock split, you see, when you calculate capital gain, you from the selling price, you subtract the cost of the stock. So when it goes for a split, let's say a 10 rupee share is split into 5 rupees each. So you'll obviously subtract 5 rupees from that, because now that the cost has been split into two portions. Suppose a 10 rupee share, which has been split into two, you end up selling for 50 rupees. So in 50 rupees, if you sell one part of the share, the cost of acquisition will be 5 rupees, which is two portions. So a 50 minus 5, 45, of course, will be the, and on that you pay, if it's long-term capital gain, you pay 12.5%. Otherwise, you pay on short-term capital gain. Yes.
1: और कोलकाता से हमारे साथ अतनु साहा जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम, एंड थैंक टू एवरीबॉडी एंड थैंक टू आवर ऑल इंडिया रेडियो। सर, माय क्वेश्चन इज लिटिल वीक, दिस इज आउट ऑफ एल नीनो सिचुएशन राइट नाउ, इज एटलीस्ट व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन वी हैव, रेन इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। So what is your opinion about matter of, because India is based on agricultural sector,

0: till important as far as PPP is concerned. Sir, another point is that you accept a credit loan towards, in this regard, related with, sir, about MSME and agricultural sector credit from bank or another substitute area. Thank you very much, sir.
1: All right, Mr. Tanu, the second part of your question wasn't very clear, although I could get a gist of it. I think El Nino impact is being felt around the world, and India, you know, if you see the IMD forecast this year, yeah, it is said that we may be deficient in terms of monsoons by about 10% or so, although this the estimate keeps changing as we progress. So far, there's been fairly okay rain and a little bit of deficiency somewhere, a little bit of excess somewhere. That's always the case with monsoon. Yes, because we are primarily an agri-driven economy. So any impact of weather does have an impact on our economy as well. And I think the second part of question is also related to that. What will be the impact on MSMEs? Yes, the agri-based industries and MSMEs also get impacted because the agriculture produce is impacted. And by the way, El Nino is not necessarily about shortage of rain. El Nino makes things very unpredictable. Yes. You could have very big rain, very excessive rain. You could have absolute deficient rain. You could have unevenly distributed rain. You could have a regionally imbalanced rain. So El Nino can take many forms and shapes. We are just about the beginning of the monsoon season. Let's wait till the end of August to make a final conclusion. And then your answer will be more comprehensive.
2: जी श्रोताओं आइए आगे बढ़ते हैं. अन्य खबरों में भारत और न्यूजीलैंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद आज अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया. इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवा में अपने सालाना द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका यह दौरा आपसी संबंधों को मजबूत करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे दोनों देशों के बीच में स्थापित हुए संबंधों को नई गति मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के चलते किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे.
3: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे. इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया. इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे.
4: Right, let's take the next call from Bhargav, who's calling us from Delhi. Bhargav, we are running short of time, so I'll ask you to please be very brief.
5: Jain sir, ASIM mein jo sale ke purposes dikhaye gaye hain wo higher spread dikhaye gaye hain. Secondly, it does not exclude stamp duty, broker charges and various charges like SEBI charges, GST charges, etc., which comes to around 0.8 to 0.9%
1: भार्गव जी, आपका जो शुरू का पोर्शन था, दैट पोर्शन इज नॉट क्लियर. यू आर टॉकिंग ऑफ यू नो ब्रोकरेज एंड ऑल दैट, प्रोबेबली समथिंग रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी. मैं आपको सलाह दूंगा भार्गव जी, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट टाइम, बिकॉज द क्वेश्चन वॉजेंट वेरी क्लियर. आई माई हम्बल अपोलॉजीज.
2: दिल्ली से हमारे साथ स्वाभिन जुड़ रहे हैं. स्वाभिन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपने सवाल पूछिए.
6: नमस्कार सर.
1: नमस्कार
6: सर, मैं रेगुलर सुनता हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने आज कॉल किया है और मेरा ही लकी है कि आज कॉल लग गया है.
1: बताइए.
6: सर, मैं जैसे ITR भरता हूँ हर साल और मेरी सैलरी 12 लाख रुपए की साल का भरता हूँ
1: जी.
6: अब तो सर टैक्स लगता नहीं है
1: जी,
6: तो क्या मुझे भरना जरूरी है सर?
1: देखिए, अगर रिबेट की वजह से, जिसको पहले 87A रिबेट कहते थे, अगर उस वजह से आपका बिलो टैक्स आ रहा है तो आपको भरना चाहिए. जो लोग बिलो एग्जेम्पशन लिमिट हैं, उन लोगों के लिए भरने की माफी है. 4 लाख से अगर आपकी कम है न्यू रिजीम में और 2.5 लाख से कम है ओल्ड रिजीम में, फिर तो आप नहीं भरेंगे. पर अगर रिबेट की वजह से, क्योंकि आपकी 12 लाख है
2: जी,
1: तो आपको भरना चाहिए और उसको बकायदा नील के रिटर्न आपको फाइल करना चाहिए.
4: नाउ हैव लेट्स हैव अ लुक एट द कमोडिटी प्राइसेस वीकली बिहेवियर. क्रूड ऑयल, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज शार्पली दिस वीक आफ्टर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईरान वाज ओवर एंड दैट ही डिड नॉट वांट टू एंगेज with Tehran following renewed hostilities. During the week at the Intercontinental Exchange ICE, Brent crude September futures surged 5.4% to settle at $76.01 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI crude August futures jumped 3.8% to end at $71.41 per barrel.

0: और शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम कॉल्स पर जितने श्रोताओं जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत
1: धन्यवाद। It was my pleasure. Thank you so much. धन्यवाद।
2: And before we close, a look at the headlines. Benchmark domestic indices snap 4-week winning streak. Sensex and Nifty decline nearly 0.3%. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. And global crude oil prices jump this week amid renewed hostilities in West Asia. And that's it in this edition of the program. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: நேரம் 11:40. ஆகாஷ்வாணி, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்ட். தொடர்வது திரைகானம். முதலில் சிவந்தமண் படத்திற்காக ஒலிக்கும் பாடல்.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदर देवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में

इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदर देवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान

0: है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोंगोगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया गया है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले मार्केटा वोद्रोसोवा ने 2023 और बारबोरा क्रेजिकोवा ने 2024 में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती थी। साउथम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: கீட் அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है।

0: वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था

शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। वेनेजुएला में 24 जून को आए दो भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया जा सका। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 पुरुष वर्ग में 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आदित्य ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में फिलीपींस के बरुइस एफ्रेम जॉन को 5-0 से हराया, जबकि 60 किलोग्राम में सिकंदर ने ताजिकिस्तान के शरीफ खोन नूरालियेव को 4-1 से शिकस्त दी। साउथहैम्पटन में खेले गए पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேர்கள் இதுவரை 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் ஜக்தீத் சிங், சித்ரா சிங் அவர்களின் கிருஷ்ண பஜன் மற்றும் ஃபரிடா கனும் அவர்களின் கசல் கேட்டீர்கள். நிறைவு பெற்றது இனிய ராகம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत

राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें

0: मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया और कई पीढ़ियों के असंख्य लोगों के दिल को छुआ। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के कल वियतनाम के फूक कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरल से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने वियतनाम में हुई पर्यटक नौका दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचुवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Laxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: Defense Minister Rajnath Singh said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை குன்றத்தூர் டி வெங்கடேஷ் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். அடையாறு பி வி தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் தவில்.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसद

समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान करेंगे। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में संवाददाताओं से

दारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान करेंगे। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भाजपा नेता ने मांग की है कि श्री उमर अब्दुल्ला या तो अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करे या फिर अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुए दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वियतनाम में हुई पर्यटक नौका दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के टॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुजोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुजोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।